खोकला, जापानिज इन्सेफलाइटिस, स्क्रब टाइफस व इन्फ्लुएन्जा थेन्यागु थिथी लोय छोरी लोया वोनी गुली उकिया त दिकेत प्रतिक्रिया अभियान तयारी यागु नितनादिगु ख वेक्ल सङ प्रदेश व स्थानीय तह नाप जाना थो निनाउनी गुलो या त दिकेत थज्यागु तयारी यागु नितनादिगुदु सङ्घीय सरकार चिन छगु करो चिन गुगु लाक दाम लम्जुङ्गा डुम्रे बेसी सहर सडक अन्तर्गत उदयपुरे चल मोहङ्के त तेकुगु आ सरकारी साधन अपिक न्याना ज्ञाना चोङ्गु थागुदो डुम्रे विशेषर चामे सडक योजना कार्यालय सूचना अधिकृत नवीन विष्ट कथ मर्स्याङदी खुसी माइक्रो पाइल खुसी सिथे पखा अथे सडक पिच वो नेलिङ देखु गुले थथे अपुगु थागुदो दे या श्रम तथ्याङ्क अध्यावधिक यागु तातुना राष्ट्रिय तथ्याङ्क ज्याकु दे निङ्क पेकगु नेपाल श्रम सर्वेक्षण याना चोङ्गुदु मुक श्रम शक्ति लजगा अवस्था थिथि ज्या व ज्या बजार या अवस्था सिकेगु थजियागु सर्वेक्षण याकुगु ख फागुन्तको जुइगो सर्वेक्षण ज्या याइगु उमेर पुच या त जक थो सर्वेक्षणे दुथिना तगुदु कृषि विकास निर्देशालय सुर्खेत सोम किसान या त मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट कृषक शिर्पा ललहागुदु मिग छको ज्याचौ या दी सुर्खेत या निर्देशक चित्रबहादुर रोकाया आर्थिक द 2283 थो शिर्पा ललहागु ख भेरीगङ्गा नगरपालिका 11 सुर्खेत या बायो ग्रिन एग्रो प्रहरी सञ्चालक समीर खर्तिया त सुइदो लेगबेसी नगरपालिका 3 सुर्खेत या कृषि तथा पशुपन्छी फार्म र सञ्चालक अमित चलाउन या त नि न्यादो वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 11 सुर्खेत या कर्णाली ड्रागन कृषि तथा पशुपन्छी फार्म र सञ्चालक सुमन सुवेदी या त निदो दानाप शिर्पा ललहागु ख ए महानगरपालिका 18 या तपिता उद्याने ए महानगरपालिका पूर्व प्रमुख पिएल सिंह या छ्वाता ए महानगरपालिका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोल उलेजिया यानादिगुदु मधुम सिमिया छोता गुङ्गु लक सुई च्यादो तकिया ल्या मूर्तिकार श्याम तुलाधर देखादिगु ख संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा नेपालमा भूमिहीन तथा सुकुम्बासी नागरिकका पङ्ग चेङ्केत सरकार नाप इनाब यागुदो सुनिगा खुसी सिथे पाखे सुरुचित थासे यङ्कु पिँ सुकुम्बासी या प्रतिनिधि पिन्छ मिग यमुना सरकार या ध्यान शालाका आगु ख थाइल्यान्ड राजधानी बेङ्केङका चाटु चक जिल्ला या रोङ बिहार ना लाट प्रा ओ ना या पवे मि नोगुदो पया स्टेजे सर्किटे मि नोया निनाउङ्गु मि अन दुपी निन हेम मुनु त सिगु ख मि नोए ढुङ्का म त सिगु व तरङ्गु सले मुगु व विशालु ग्यास पिहाँ उया मुनु त सिगु धागुदो म त सिगुली पिहाँ उएगु था माले मफिया ल्युनिया चपी दु थासे आप्ल मुनु त सिगु ख खापा जोपी खुइसोम मध्ये निनी म त चगु धागुदो अमेरिका व इरान दोती स्टेट अफ हर्मुज या त कया कचो या दत थुई अमेरिकी सेना दक्षिणी इरान ने नुगो हवाई आक्रमण याको गुदो इरानी सरकारी सञ्चार माध्यम कथ इरान प्रमुख बन्दरग्राह सहर बन्दर अब्बास सिरिक ज्याक्स नाप क्युसिम टाफी त धङ्गु थासे मुगुदो अमेरिकी सेना इरान दुनी मोटिन सचिव पिगु थासे आक्रमण यागुदो उकिया लिसले इरान बहराइन कुवेत ओमान कतार व जोर्डन आक्रोन यागु ख थौ देन्याङ्क सामान्य से आफ्नो वा वैगु व हिमाली लागे चपु कुवा वैगु थागुदो मिग सोनिकोले नि गुगु डिग्री सेल्सियस क्वाज लुगु ख थौ सुते न्याता इजुया छिकुम्नेटे लुगु सूर्य शनिल्या नेता इजुया च्यागुम्नेटे बि नेपाल भाषा बुक कोचाल शुभ्या

दि रेडियो नेपाली आङ छिरिङ लामा शेर्पाने सेरिकेकी साङ्घ्युर सेन्द्रनाङ सिलोन बालेन्द्र साहकी प्रदेश दिनकेर्ला बर्न मेन्जु केन्द्र गोजुटुप्ला सर्केक लाका गोजुगौला निर्देशन नाङवाए सिलोन तेजिन लन्सक लेखुङला आरिङ ठोटेन सेन्द्रिक प्रतिष्ठानकी कुल उपकुलपति तङक्यान थुक्टेतला सिलोन साहकी सुङ्की मेनखाङतिवला बर्न वार्ड गेछा जप तन्दोकला खक्सेनपो छर्सी जप निर्देशन नङ्गुपिन सिलोन साहकी मेसिङ ने क्योन फुकु निर्पुतिवला तुसोलारङ मेन्जु नेगो डिक्कीतुब्ला सङ प्रदेश तङ डेलोतुप ठोटेन सोक्पा तुई पर्ला चिक्डिल्कीगो टोङ्गु नाङसुङ सिलोन साहकी मिङेमजुङा तुई तन्दोकला गिर्की मेनखाङकी ओपिडी सेवाला युङसोकला ग्याछा सिथाम्बा सहुलियत तिर्गो टडिक्कीगोला निर्देशन नङ्गुप सेनवाए आरिङ आदिकवि भानुभक्त कि सही निताङ चुक्सुमकी ठुङ्कर तुसेन ग्यालखप नाङला ल्यारिम नासो कोरिक्याने सिंहए विक्रमलो चिक्तोङ ग्याग्य दिन्छु थोन्चिक असार लाकी गते निशुगुकी सेर्मु तनहुकी चुँदी रमगाला के नङ्गुप आदिकवि भानुभक्त आचार्य कि एमबी राष्ट्रिय विभूति सङ्गिन्दुप सेनवए आदिकवि भानुभक्त आचार्य कि संस्कृत के कि रामायण नेपाली केला गिरुवाजो नङ्गुपिन आचार्य कि रामायण त्रङ मिदा क्याने प्रश्नोत्तरी भक्तमाला बधु शिक्षा तङ राम गीता दकेत देव तङ कविता तिवासङ टिनगुभिन दिपरदारङ छोक्सो डोलप्रसाद अर्याल कि आदिकवि भानुभक्त आचार्य एमबी के साहित्य तङ रिक्सुङ इन्दुप सुङवाए आदिकवि भानुभक्त आचार्य कि ठुङ्कर तुसेन कि कपला भानु प्रतिष्ठान कि आरिङ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानला कोडिक्या उल्यारिमला खोङकी भानुभक्त आचार्य राष्ट्रिय विभूति इन्दुप सुङसुङ आदिकवि भानुभक्त आचार्यला ठेन्सो किदुप्रङ मिदा क्याने साहित्य एमबी के साहित्य तङ रिक्सुङला यर्गे जोगो खक्सेन बोतुप सुङिन एमबी के रिक्सुङ तङ साहित्य यर्गे तोङगुप तेरिकी ल्यागेनी दुप सुङसुङ तुग्राङ क्याने सिग्याल लोन्पो शिशिर खनाल कि आदिकवि भानुभक्त आचार्य कि एमबी के कि सितेमा जम्बुलिङ कि एमबी मितिवला चिग्रिल जो सेनवाए एमबी लोभजुङ परिषद तङ भानु माध्यमिक लोपटाकी भानुभक्त आचार्य कि सैनी तङ सुक्सुङकी ठुङ्कर चुसिङकी कबला आरिङको डिक्याउ ल्यारिमला लोन्पो खनाल कि एमबी के त्यामा एम्बुला जम्बुलिङला चिग्रिल जब लाका भानुभक्त कि क्या नङ्गुबिन सुङसुङ लोन्पो खनाल कि भानुभक्त तङ गाँसीकी कोरला सुङ्लप नगिन चिसो घेरगेला मिमाङ त्यो तेरिकी ल्यागेन खक्सेनपो ओतुप सुङसुङ राष्ट्रिय सभा नङ्गी यार्गे पल्जोर कोर तेजिन सुशासन छोक्पी छोक्डुला प्रदेश कि थुङ्गुप छु स्याङ्गे तेजिन छुलोक टडी कोर कि लोभजुङ प्रतिवेदन कोरला टोङ्गु चुङवाए सिंहदरबारला आरिङदेउ छोक्पी छोक्डुला छोक्मितुई मधेस प्रदेशला थुङ्गुप छु कि दासा त्यो च्याङ्गे जप तेजिन साखाङ टडी कितुप कोरला लेन खेफेल कि गो कोरला खक्सन पोसी गो सुङसुङ तुग्राङ क्याने छोक्डुला छोक्मितुई मधेस प्रदेश कि कुसप्तुई सानेदेशन तहस्याक लेम्ने छुलोक कि न्यामसिप कि गो ताङ जुक्थम्बी तोन्दोकला सुङ्क्यो तुब्ला सानेदेशन मितिवाला टुङ्गु खक्सेनपो तङ लेन खेपेल किगोला सुगेप नाङवाए सिग्याल लोनखाङ तङ क्यान डेलो तुब्राहादानी विभागकी एमबी लोग्यु कि तेरिस नाङ गेर्पु डाटा माइग्रेसन लाका डुपा क्यानवाए विभागकी लेन्चिक खेपेलकी आरिङने जुन पासपोर्ट सम्बा जब तङ टडिकितु प्रणाली त्यामा सेवा जिन्कङ क्याउ सेनवाए दिरिम्बाला एमबी मि करोड चिकी पासपोर्ट सुङ्क्यो पोतु प्रणाली सम्बाला पो विभागकी सेतुभिन नाम गिरुवाकी जोसालेन्सी पोखरा जोमसोम नम्रु सेवा त ला सुम्की तन्दोकला जिन्क्योङ मिक्यु सेनवाए छरोबङ्गी गेप्सीमा जेठलाकी दुन्ठक सुम्ने जुन बदौलाकी दुन्ठक ताङबोसेक नम्रु जिन्क्योङ मिकितुप सेनवाए जोमसोम नम्रु थाङकी सो दिपक पोखरेलकी सेतुप नङसिन नम्रु जिन्क्योङ कि वाउ तारा इयर तङ समिट इयर कि सेवा जिन्क्योङ मिकितुप सेनवाए रसुवाकी लेन्दे चाङबुला दाङ्गोमु टोक्पा वासीमा सही सिक्ताङ चुचिक मेगावट क्षमताकी रसुवा गढी छुलोक आयोजना जिन्क्योङ मिकितुप थाक्चोत क्यानवाए रसुवा गढी छुलोक आयोजना किसो सन्तोष अधिकारीकी सेतुप नाङसिन तन्दा हुङथोपु कलेतेवला खक्सेनपोची दाङ्गोमुने जुन छुलोक आयोजना बन्दा क्याउ सेनवाए गलुप लोलासाङ लेन्दे चाङबुला टोक्पा वासीमा ती आयोजनालाई बङ्गी क्योन फोकुइन् गोसाइकुण्ड हुलसोक्पा ताङ आङ निकी वडा चिखेप कामी छिरिङ तामाङकी लेन्दे चाङबु ताङ बोटेकोसी चाङबी गाडीगुडीला डप म्याङ्गुला मिमाङतिवाला सिउवाए ट्राफिक कोर्सुङ मगमिकी गलुप छुजो निसु जी नाङला गाडी तोङगुप मि तोङ नि ताङ सै ङताङ सुङचु सोङला ठिम ताङवाए तितेमा सुङल ट्याङ्गा बुम चुर्गु ताङ तोङ दिन्छु थोन दिन गेठालदु सेनवाए काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक कोर्सुङ मगमी ल्याखुङकी सेतुम नाङसिन छाङआरक थुने गाडी तोङगुप ठिमकी खप्तेला राइड सेयरिङ एप थोकु ट्राफिक लाइट मिच्यु ताङ गाडी स्पिडला तोङगुप तेवला ठिम तोङगुप सेनवाए तुग्राङ क्याने ट्राफिक लेन मिच्यु काङथेप दासाला हर्न तोङगुप ताङ काङथेप दासाला गाडी जाङने पार्किङ किटुप ताङ ट्राफिक ठिम मिच्यु तेवला ठिम तोङगुप सेनवाए रङजुङ कालेकोरकी
ক্যোন তেমা সুংকেপ কিতুবলা লেন তং সুংকেপ কোর কি সেওয়ালা টিম্বু জোলামু তং ফেনছেনপু জপলা নাংসিত লোনখাং কি বিপদ হটলাইন আং এক দুই তিন চার জিনকন ক্যানওয়ায় তান্দা ইয়ারবি তুসলা ছড়ি জোসালেন্সি শতক টকপাচিং এ রংজুং কালে উংথপুতব কি রংজুং কালিয়ালা শুর সিং আং এক দুই তিন চারলা ফোন তঙ্গুপলা মিমাং তিওয়া তেরিলা শুয়ায় লোন খাং কি সেতুব নংসিন মিথিউই রংজুং কালে কোর কি লেন তিওয়া কালে তেওয়া তং সেমলা সেমদু গোসিং সং ফোন তাংনে টঙ্গু লংথপু সেনওয়ায় গ্যালিয়ং থোটেন লোপটা তেদিন দলেন গ্যাংসিং ছোকপি সেমলা নাসাম মেলাকপা শিয়ার সিং সেমদু গোসিং তং রঙ্গি হক সেতু নাসাম শিয়ার সিং টেঙ্গা মুফুকু আং এগার ছাইসাটিলা ফোন কিগোলা মিমাংতিওলা শুয়ায় ছোকপি মিমাংতুই তন্দকলা খাকসেন বুঝি নে লেন খেপেল কি সেমলা নাসাম মেলাকপা শিয়ার সিং আং এগার ছাইসাটিলা ফোন তঙ্গুবলা শুয়েন সিসি তুখানে ফোন তংনে মিতুই বিন্দু তামিয়াতিও সং জুকুতব কি তুসোলারং ফোন তংনে রগ্রাম লঙ্গুবলা মিমাংতিওলা শুয়ায় জল তেজিন মৌসম বিজ্ঞান বিভাগ কি তাউঙ্গুপ নিমা সুমসেক গ্যালখাপলা ছড়া গেকু তং চাংবুতিও গ্যাউ তপকি চাকপু কিগৌলা মিমাংতিওলা শুয়ায় ছড়ি জোসালিনসি গ্যালখপকি জংখা সুমচু সোয়াঙি সিনং হাকওয়ালা ছড় বঙি গেকথপু তং শতক তং টকপা উংথপু সেনওয়ায় তুগ্রাং ক্যানে বিভাগ কি বাড়ি বিত বিনোদ পরাজুলি কি কাঠমান্ডু ভক্তপুর ললিতপুর তং কাবরে পলাঞ্চোক তং এম্বা জংখালাসং শতক কি থরিম কলে উংথপু খ্যান্তক নাংওয়ায় বিভাগ কি সেতুপ নংসিন আরিং কোশি বাগমতী তং গণ্ডকী প্রদেশ কি খাংরি সকুল কি দাসা বঙ্গিলা তং লুম্বিনী কর্ণালী তং সুন্দর পশ্চিম প্রদেশ কি খাংরি সকুল কি দাসা লালালা থক ডুক ছারো তং খা গেকথপু নেতাংতু সেনওয়ায় তন্দা ইয়ারবি তুসলা ছড়ি জোসালেন্সি দাসা নাসকলা শতক তং টকপা তং সুজ্ঞান উংথপু তপকি গমালারং সুংক্যপ কি টডি ক্যানে চাকু ক্যান দেতুবলা বিভাগ কি মিমাংতিও তেরিলা শুয়ায় রেডিও নেপাল নে আরিং কি সেরিকে কি সাঙ্গির দুসুং তুজিছে।

नसु फ्याफुल्ला सलगारगे ताङला छार भोरी राङ्दा डेनमुला सूर्य मोक्तानला तर्फ ग्याम दान्देचुके ताङ सार्वजनिक सेवा प्रसारण गेन्दुन रेडियो नेपाल बागमती प्रदेश सिंहदरबार स्टुडियो ग्याम्से प्रसारण तासिटी बमुला लानिरे सोमबार कुनु दिनेला ब्लिङ एसिचुइसे गामी नेटिबली छ प्रसारण तापन खापा स्यालगार गेताङ रेडियो नेपाल लोलोलोलो मिडियम वे फ्रिक्वेन्सी गते एफएम ब्यान्ड 98.1 मेगा हर्ज सार्वजनिक सेवा प्रसारण गेन्दुन रेडियो नेपाल एप्लिकेसन गनिला वेबसाइट गते www.radionepalonline.com थेन www.radionepal.gov.np ग्याम राङला मोबाइल आइप्याड ट्याब्लेट थेन कम्प्युटर हिनन प्रत्यक्ष ज्ञानबारी खाम्बा बोला खपिपेङ्गा छमी तिनी नाङ्गर बारखाला दुई मनसुनला दुई अर्थात् नामताइब दुई तापसे राङ्ला लुइथेन सुरक्षा त च्यासी विशेष सतर्कता बारे राङ्दा गनिला मोइजेन मुला चु मौसम रे क्विला मुहान गदे दूषित बारे खाम्बसे खाइमादामान ख्वालबा अथवा फिल्टर लबा क्वि चेकेन थुङमारी नुन मोइजेन मुला मोसेम दिम्रेन चोब चापसे ताजा थेन लिप्प चापसे चिकन चापा बानी लदोबा बानी लबरिन राङ्दा मोइजेन मुला चुरङ लबरी खाम्सम हैजा रुइबा छिर्वा झाडा पखला रङमा याम ग्यामेनुन याङसे याङदा सोना लबरी खाम्ब मुला चुराणु लसी डेङ्गु थिन मलेरिया लिएन लबा पाङ्दी अथवा लामखुट्टे टिबारे आखाम्बा सुबारी दिम्ला ख्यारख्युर क्यु छ्याबारे आपिनमा झुल्ला प्रयोग लादोबा थेन क्योङनुन लुइ ग्याप्पा क्वान क्वान बारिन राङ्दा नाई तिरै दुई गाछा हिँड्छेन मोइजेन लाबन खाप मुला उसेम चुदुरी भाल ढुइ थिएन तिप्लिङ राङमा प्राकृतिक प्रकोप ग्याम्से सोबारी दिमयाम फिर्क्याप थोनमा बिमा गाछा मौसमलाई पूर्व अनुमान थिएन सडकलाई अवस्था च्यासी गोसी चेकेन भ्राबरी नामताइबा थिएन आताइबा च्यासी भ्राबरी राङ्दा मैजन मला उसेम राङ्से विश्वकप फुटबल च्याबन खाप मुला विसाम विश्वकपलाई क्वार्टर फाइनललाई खेल गर्दै क्लाङ सिजनमा मुला दरेम सेमी फाइनललाई खेल गर्दै तापन मुला सेमी फाइनल थुम्बाली छ फाइनललाई खेल क्लाङसेला ताप मुला क्वार्टर फाइनल्ली छ दरेम सेमी फाइनल्ली फ्रान्स थेन स्पेन इङ्ल्यान्ड थेन अर्जेन्टिना क्लाङसेला ताप मुला फ्रान्स थेन स्पेन चुनन अङ्ग्रेजी जुलाई लाला चुइसे डु अर्थात् चुनन असार लाला सोमचुइसे गिक कुनु मुनेला गिक ग्यासे ब्लिचुइसे घा मिनेट्री क्लाङबन मुला फ्रान्स थेन स्पेनलाई खेल अमेरिकाला डलास रिताबन मुला चुरानो लसै अर्जेन्टिना थेन इङ्ल्यान्डलाई खेल विसाम चुनन चुइसे निस जुलाई 2026 अर्थात् चुनन असारलाला 32 गते सोमचुइसे नि कुनु मुनालाई गिक ग्यासे ब्लिचुइसे घा मिनेट्नीमा एटलान्टा रिताबन मुला सोमस खेल विषम चुइसे ब्रे जुलाई अर्थात् 18 जुलाई 2026 अर्थात् चुनन साउनलाला सोम कुनु मियामी स्टेडियम अर्थात् हार्ड रक स्टेडियम विषय पाङमा ग्लारी ताबन बला ओसम फाइनल खेल जहाँ अङ्ग्रेजी लाला चुइसे निस जुलाई 2026 अर्थात् चुनन साउनलाला ब्ले कुनु नेपाली दुई अनुसार मुनाला चुइसे घिङ्यासी ब्ली चुइसे घाँ मिनेटनीमा न्यू जर्सी रिमुबा मेट लाइफ स्टेडियम रि ताबन बला चुनन जानकारी गर्दा छ्याम छ्याम्री तिनीलाई गेताङ दति गे जालमाया जालमाया गादे ज्याबा चुमाया केवा हिंसे केवा दोना छर्सी टिकाइ चुमाया बिब वाइ ग्याम चुवाई रिकाइमला निर्मला घिसिङ थेन रमन थामिला चुवाइदा चुबिमा गाछ अमृत लामा थेन डोङमा काइमो योगिता मोक्तान से

यान छिबाइकिन मला सालगार गेतांग गेतांग निदारम देपेन यानगे चो अर्को भाई चुवाइजा लामन दिङ्गा छखाबो मुबा तामाङ युलबासे लामन सिमनिबो भाइ नचु चन्द्रकुमार दोङला वाला वाला ग्राम्बा चुवाइदा चुबिमङ्गा छ उत्तर लामा साङ्गुल्से छार रेकर्ड लाभ मुबा विसाम काइपा रोज मोक्तान छ चुवाइदा नेपाली रिनुन शुभ मुबा धन्दे लिचल रेम्री विसाम मेन्दो सोम काइपा काइमो जुगु से देपेन रेकर्ड लसी छार भिडियो नुन शुभ मुला धन्दे देङ्गे थेनुन वालवाला ग्राम्बा वाई वालवाला ग्राम्बा च्यागोई साइलीला वालवाला ग्राम्बा चुलबुले साइलीला वालवाला ग्राम्बारी चोक चोक लाइलम खाला खाम्बा वाइरी काइमुला प्रकाश लामा तितुङ युद्ध लामा थेन सुमिना लुला

0: सु रेडियो नेपाल हिन्न तामाङ सानगिर रेढाङनी दा झेनमुला गाइन्दिरा थिङ काइब्लोन बालेन्द्र साहसे गोर्निस्नोन प्रदेशरी सुविधा सम्पन्न वर्ण मान लाभा केन्द्र शोभा योजना यो नान्ती बारी सुङबा मुला काइब्लोन थेन ब्लोन सेङ छाङला घेजाङरी तिनी लुई विज्ञान प्रतिष्ठानला रोग कुलापति थेन लाभा काठुरी ब्लोन साहसे ग्रेन काइब्लोन साहसे ग्रेन सरकारी अस्पताल डी मेसे क्रोमा मान लाभा वार्ड शोभादा तोबा योजना गाछा बोरबारी सुङबा हिला काइब्लोन साहसे क्रोबा आखाम्बा ताबा मिनिसे धुइरिन मान लाबारी खाम्बा व्यवस्था ढिक्ना लाबारी सङ्घ प्रदेश तेन सम्बन्धित घेन्दुन कादे घुङ्रे काठुई लाबारी सुङबा मुला तिनी ग्यार्जा निसे चुई सोमछा भानु केबा दिन्छेन युल नाङ्रे लोलो लोलो गेखोर सेङ सिद्धाङ बानमुला विक्रम सम्बद 1871 असार निचुई कुला कुनु तनहुला चुन्दी रमधारी केस्युबा नेपाली ग्योइला आदिकवि भानुभक्त आचार्य नेपालला ह्युलबाङ विभूति हिँला आदिकवि आचार्यला रामायण बिमा स्यान्दो प्रश्नोत्तरी भक्त माला बधु शिक्षा राम गीता राङबा वाइ खेर सेनोन नेपाली सेमलेङदा कोङबा सोबारी रो लाछ्युबा मुबा नेपाल फिर्क्याभनोन दार्जिलिङ सिक्किम छ्याम भारतला लोलो लोलो ग्लाथेन नेपाली कदे चिबा जाम्बुलिङला स्यान्दो ह्युल्डिन भानु केबा दिन्छेन धाङबा लाबा मुला सुङबोन डोलप्रसाद अर्यालसे आदिकवि भानुभक्त आचार्य नेपाली ग्वेई सेमलेङथेन रिमठिमला वाइखा खेनपो जेखेन आताना नेपाली कदेला वाइ काई हिन्ला विषि सुङबा मुला आदि कवि भानुभक्त आचार्यला ग्यार्जा निचे चुई सोमछा केवासाङ दिन्छेन लाभसरी भानु प्रतिष्ठान से तिनी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान डी सेङबा गेखोरी सुङबो अर्यालसे भानुभक्तदा तिनीला रारी जेखेन डान्बा आहिन नेपाली ग्वेथेन सेमलेङदा कोङबा सोबारी बङ लतोला विषि सुङबा मुबा रोङसा ब्लोन शिशिर खनाल सेनोन आदिकवि भानुभक्त आचार्य से नेपाली ग्योइग्याम जाम्बुलिङदा गिक शोभा मुला विषि सुङबा मुला नेपाली स्यार सेङजाङथेन भानु माध्यमिक लोपखाङसे भानुभक्त आचार्यला ग्यार्जा निसे चुई सोमछा केवासाङ दिन्छेन लाभसरी तिनी सेङबा गेकोरी ब्लोन खनालसे भानुभक्त थेन घाँसीला ताम तेस्युबान ह्युल सोबारी मोकोनला गे भूमिका कोङबा ताला विषि सुङबा मुला राष्ट्रिय सभाला विकास नोर मामिला थेन सुशासन समितिला चिसाङरी मधेस प्रदेशला थुङबा क्युई सरसफाई थेन क्युनियर व्यवस्थापनला अध्ययन प्रतिवेदनला मस्यौधारी काठी लाबामुला सिंहदरबारी तिनी चिबा समितिला चिसाङरी सांसद कादेशे मधेस प्रदेश री थुङबा क्युई सरसफाई थेन टोयलेट व्यवस्थापन डी छोरङान चुरे थुमला दोहन काबारी चुरे थुम्री दोङ सुदोबा विषि सुङबामुबा सांसद कादेशे मधेस प्रदेशला मुल्मी कादेशे स्थानीय तह दोना दोषी क्युनियोर व्यवस्थापन लातोबा थेन क्युनियोर दा संरक्षण लाबारी होजन घ्लाला मिनिदा तोबा सुझाव थेन छोरगान पिन्दोला बिची सुङबा मुला ह्युलबाग विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक 2081 थोरी काठुई लाबारी चिबा प्रतिनिधि सभाला स्यार लुइथेन सूचना प्रविधि समितिला चिसाङरी विधि विज्ञान प्रयोगशालाला गे कर्तव्य थेन नमुना परीक्षणला ताम्री काठुई ताबामुला काठुरी पोकिन्छुबान समितिला सांसद कादेशे सञ्चालक समिति से प्रयोगशाला सम्बन्धी ज्ञान किनबारी स्यान्दो ह्युल्डी तालिमरी पुइबारी खाम्बा व्यवस्था विधेयक री काप्तोबा नमुना जाँचला रिपोर्ट सम्बन्धित पक्षदा पिनबा लिछा नोन गोपनीयता थान्दोबा थेन नमुना परीक्षण योग्य आमहान्दे धोना होजा थुम सुरक्षित थान्दोबा लासी ठिम सोबारी सुङबा मुला रोङसा ब्लोनखाङला राहदानी विभागसे नेपालला दोङराबलान मोकोन बिमा ग्रेन डाटा माइग्रेसनला घे ज्याना लासी थुम्ना लाबामुला विभागसे सूचना छिपान तिनी हेन्से छार पासपोर्ट व्यवस्था पन प्रणाली ग्याम सेवा सेङबाहिनला चुगेसे करोड घिक नेपाली मिनिला पासपोर्ट सम्बन्धी विवरण सुरक्षित लासी छार प्रणाली रे लेबा मुला विषि विभागसे पाङबा मुला जल थिएन मौसम विज्ञान विभाग से दाखाबा सोम्रा ह्युल नाङला जाजा गान्धी कादेरी नुन भाल खाबारी खामला बिसी पाङबा मुला पाँचथर इलाम झापा मोरङ सप्तरी दोलखा रामेछाप सिन्धुली सिन्धुपाल्चोक रसुवा नुवाकोट धादिङ गोर्खा लमजुङ तनहु मकवानपुर बारा पर्सा रौतहट चितवन नवलपरासी राङबा जोङ कादेला जाजा गान्धी कादेरी नुन भाल खाबारी खाम्बा जोखिम राङबा मुला विभाग से पाङबा मुला कोशी बागमती थेन गण्डकी प्रदेशला पहाडी थेन ग्यागर थुम्ला लानन ग्ला कादे मधेस प्रदेश थेन लुम्बिनी प्रदेशला पहाडी थेन ग्यागर कर्णाली थेन सुदूर नुप्ला प्रदेशला पहाडी थुम कादे री तिब्लिङला छ्याम नाम ताइबारी खाम्बा ताबासे सजग ताबारी मोइजेन लाबा मुला लुइथेन खाद्य स्वच्छता ब्लोनखाङसे दाखाबा नोर्दिङ 2083 थेन 84 साउन भदाउथेन आसोजे ह्युल नाङरी डेङ्गुला ताम्री छोरङान पिनबा लासोमला अभियान सेङबा ताबा मुला अभियान दा प्रभावकारी सोबारी ब्लोनखाङसे मोकोन ग्यार्जा निसे ngachi som isthaniya tahatena dikchi gelabari moijen labamula blonkhangse rang gelaba ngamri oksab tire then kawari la seka de byabasthapan qi chaba gla kaderi qi la nikasa then byabasthapan labari isthaniya tahada pangbamula blonkhangse chawa chama luiri bimara mrangsam nakru syaka de sukhasam thobo then mila kharkhur sukhasam ruige ruige mansam dengu tabari khamba tabase योनन ङामला लुई गेन्दुन्डी निबारी मिनी कादेदा मोइजेन लाबामुला लेहेन्दे स्योङरी तिलमा ङ्यासे क्युला सतह लेबा निबा लिचा ग्यार्जा गिक्से चुई गिक मेगा हर्डला रसुवा गढी जलविद्युत आयोजनाला विद्युत उत्पादन बन्द लाबामुला रसुवा गढी जलविद्युत केन्द्रला ग्रेन्पो सन्तोष अधिकारी से सुङबा अनुसार जोखिम दा घोषी तिलमा ङ्यासे हेन्से विद्युत बन्द लाबा खिन्ला स्योङरी क्युई च्याङना तासम खाम्दे योना विद्युत पिनबा बिसी ग्रेन्पो अधिकारी से सुङबा मुला टिगुमा असार निची भ्लिला लेहेन्दे स्योङरी खाबा भालसे आयोजनारी गेन ग्रेन क्षति शोभा मुबा गोसाईकुण्डा गाउँपालिका निला ओडा चोहो कामी छिरिङ तामाङसे लेहेन्दे स्योङ थेन भोटे कोसी गान्धी ङामरी आनीबारी मिनी कादेदा मोइजेन लासुबा मुला सिराहा जोङरी खालडोरी छ्याबा क्युरी ब्लुम्सी दिम गिग्लान भेन्दोसोम झाझाकोला सिबामुला गोलबजार नगरपालिका निस्ला पुरानो चोक चौहरबा रे ब्लुम्सी दिम गिग्लान भेन्दोसोम झाझाकोला सिबा हिन्ला प्रहरी से पाङबा अनुसार चोहरबाला खालडोरी छ्याबा क्युरी ब्लुम्सी होजान ग्लाला अवास सेकला चुइनी दिङला जामे सबनव खातुन चुइ दिङला जामे रुबिना खातुन थेन निस दिङला जा साइफुल सेख लुई खुर्बा धुम्ब दुइरी ब्लुम्सी सी बाहिनला चुराङलासिन बाराला कलयारी ग्युरी ब्लुम्सी डु दिङला छाजाकोला सी बामुला कलैया उपमहानगरपालिका ओडा नम्बर चुइ गिक घोराई ला ग्युरी होजान ग्लाला सन्तोष पासवानला डु दिङला झामे राधिका कुमारी पासवान तिलमा न्यासे लुई खुर्बा दुइरी ब्लुम्सी शिवा घिनला बिसी प्रहरी से पाङबा मुला मौसम ज्याबा आताबासे लामा पोखरा जोमसोम हवाई सेवाला सोमदा सोम्रा लासोमदा बन्द लाबा मुला नाम ताइबाला ताइबान लाबासे लामा जेठला निचा निस्रा हेन्से भदौला गिक्छा हप्ता दोना ओडान स्थगित लाबा मुला मकवानपुरला हेटोडा उपमहानगरपालिका चुइनिस हटियारी मुबा शिवम फ्याक्ट्री ङामला कर्रा स्योङरी तिनी स्योरी खाबा भाल्से ट्रक भ्योङना लाबा मुला स्योरी सिमेन्ट फ्याक्ट्री ग्याम युङबा अनलोड लासी याइबन लाबा ट्रक भाल लेबा लिचा ब्योङना लाबा हिन्ला बिसी जोङ प्रहरी घेजाङ मकवानपुर से पाङबा मुला प्रहरी से पाङबा अनुसार ट्रक सेङबा चितवन रत्नगर नगरपालिका चुई सोम धिम ताबा सोमची घा दिङला दीपक थिङ पौडी क्लाङसी सोबा मुला स्यान्सिबान मुबा सानगिर जिन्जे फ्याफुल्ला
1: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल
2: नेपालको समावेशी आवाज हामी सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपालबाट बोलिरहेका छौँ। अब हामी यहाँहरूलाई सुनाउँदैछौँ केही बेर विभिन्न कलाकारहरूका स्वरमा रहेका लोकदोरी गीतहरू। पहिलो गीत सुनाउँछौँ खुमन अधिकारी र विष्णु माझीको स्वर, सूर्य नेउपाने र कमल जीसीको शब्द सङ्कलनमा।

ई रेडियो नेपाल ठिक अरविन्द्र मिश्रसँग मैथिलीमै समाचार सुनल जाय। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सातटा प्रदेशमे सुविधा सम्पन्न वर्ण उपचार केन्द्र स्थापनाक योजना तत्काल आगू बढ़ेबाक लेल निर्देशन देलनि अछि। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदक कार्यालयमे आइ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानक उपकुलपति सङ्घक छलफलक क्रममे ओ प्रमुख सरकारी अस्पतालमे वर्ण वार्ड सुदृढ़ीकरणक लेल आवश्यक योजना आगू बढ़ेबाक निर्देशन देलनि अछि। प्रधानमन्त्री शाह गम्भीर प्राकृतिक जलनके रोगी सभ समयमे गुणस्तरीय उपचार पयबाक व्यवस्था सुनिश्चित करबाक सङ्ग प्रदेश सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्था बीच आवश्यक प्रभावकारी समन्वय करबाक लेल सुझाव देलनि। ओ गुणस्तरीय प्रभावकारी तथा नागरिक मैत्री स्वास्थ्य सेवा सरकारक उच्च प्राथमिकतामे रहल उल्लेख करैत अस्पतालमे सर सफाई सेवा प्रवाहमे सुधार डिजिटल प्रविधिक प्रयोग सुशासनक प्रभावकारी कार्यान्वयन करबाक लेल सेहो ध्यान आकर्षण करौलनि। प्रधानमन्त्री शाह विपन्न असहाय तथा आर्थिक रूपमे कमजोर नागरिकक स्वास्थ्य सेवामे पहुँच विस्तार करबाक लेल निजी अस्पताल बहिरङ्ग ओपीडी सेवा कम्तीमे 10% सेवा सहूलियतपूर्ण रूपमे उपलब्ध करबाक व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन करबाक लेल निर्देशन देलनि। छलफलके क्रममे उप कुलपति सभ चिकित्सा शिक्षा गुणस्तर अभिवृद्धि स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमे सुधार अस्पतालक सर सफाई विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तार दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति व्यवस्थापन अनुसन्धान प्रवर्धन आ पूर्वाधार विकास सम्बन्धी सुझाव प्रस्तुत कयलनि। ओ लोकनि स्वास्थ्य सेवामे डिजिटल रूपांतरण अस्पताल सूचना व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा किछु प्रतिष्ठानक नाममे रहल जमीन अतिक्रमणके कारण संस्थागत विकासमे पड़ल प्रभाव सम्बन्धमे प्रधानमन्त्री समक्ष जानकारी करौलनि। सभामुख डोल प्रसाद अर्याल आदिकवि भानुभक्त आचार्य नेपाली भाषा साहित्य आ संस्कृतिक कवि मात्र नहि भऽ नेपाली आत्माक स्वर भेल बतौलनि अछि। आदिकवि भानुभक्त आचार्यक 213 जन्मजयन्तीक अवसर पर भानु प्रतिष्ठान आइ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमे आयोजन कयल कार्यक्रममे ओ आचार्य राष्ट्र विभूति नेपाली जातीय चेतनाक प्रतीक आ जनताक प्रमुख प्रतिनिधि स्रष्टा भेल उल्लेख कयलनि। भानुभक्त रामायणके नेपाली भाषामे अनुवाद कऽ आम नेपालीके धर्म दर्शन नीति आदर्शक सहज पहुँच उपलब्ध करयबा आ कराओल गेल सभामुख अर्याल बतौलनि। भानुभक्ते आजुक दिन स्मरण करब मात्र नहि भऽ हुनक योगदानके आत्मसात करैत नेपाली भाषा साहित्यके आओर समृद्ध बनेबाक संकल्प लेब आवश्यक रहल बात पर सभामुख अर्याल जोर देलनि। आधुनिक प्रविधि विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा बदलैत के सामाजिक संरचना बीच नेपाली भाषा संस्कृति पहचानके जोगायब आ उन्नत बनायब सभक सामूहिक जिम्मेवारी भेल ओ बतौलनि। युवा पुस्ताके नेपाली भाषा साहित्य प्रति आकर्षित करबाक चाही, सृजनशीलता आ नव प्रवर्तनके प्रोत्साहन करबाक चाही। भानुभक्तक आदर्शके समयानुकूल रूपांतरण करैत आगू बढ़बाक बात पर सभामुखक अर्यालक जोर रहल अछि। राष्ट्रसभा अंतर्गतक विकास आर्थिक मामला तथा सुशासन समितिक बैठक में मध्य प्रदेशक खाने पानी सर सफाई तथा जल स्रोत व्यवस्थापन संबंधी अध्ययन प्रतिवेदन के मसौदा ऊपर छलफल भेल अछि। सिंह दरबार में आई बैसल समितिक बैठक में सांसद सब मध्य प्रदेश में पेयजल सर सफाई तथा शौचालय व्यवस्थापन संबंधी जनचेतना चूड़े क्षेत्रक दोहन नियंत्रण चूड़े क्षेत्र में वृक्षारोपण के प्राथमिकता देल जेबाक बात बतौलनि। सांसद लोकनि मध्य प्रदेशक जनप्रतिनिधि सब स्थानीय तह में पहुँच कर जल स्रोत व्यवस्थापनक नियमित अनुगमन कयल जेबाक जल स्रोतक दीर्घकालीन संरक्षण के लिए स्थानीय समुदाय के आवश्यक सुझाव तथा सचेतना प्रदान कयल जेबाक बात पर जोर देलनि। बैठक में समितिक सचिव डॉक्टर रोजनाथ पांडे मसौदा प्रतिवेदन में पुनर्भरण क्षेत्रक संरक्षण लेल भू उपयोग निमंत्रण आ नियंत्रण मार्फत चूड़े शिवालिक क्षेत्रक संरक्षण बोरिंग के लेल इजाजत पत्रक प्रावधान लागू कयल जेबाक तथा संवेदनशील क्षेत्र में भूमिगत पानि निकलबा में सीमा थोकबाक व्यवस्था समावेश कयल गेल जानकारी देलनि। मध्य प्रदेशक मुख्यमंत्री कृष्ण प्रसाद यादव जनकपुर धाम धार्मिक आस्था केन्द्र मात्र नहि भऽ प्रदेशक आर्थिक विकासक प्रमुख आधार बनि सकबाक बात बतौलनि अछि। धार्मिक पर्यटन के रोजगारी लगानी स्थानीय उत्पादन सँ जोड़ि कऽ आगू बढ़ेबाक लेल धार्मिक पर्यटन के प्रमुख केन्द्रक रूप में जीवंत बनाओल बतौलनि अछि। जगत जननी सीताक जन्मभूमिक रूप में विश्वभरि परिचित जनकपुर धाम पछिला वर्ष में धार्मिक आस्था केन्द्र सँ पर्यटन संस्कृति व्यापार आ स्थानीय अर्थतंत्रक महत्वपूर्णक आधार के रूप में अपन पहचान विस्तार करैत आयल अछि। प्रत्येक वर्ष लाखों स्वदेशी तथा विदेशी भक्तजन सब पर्यटन के आगमन सँ आ पर्यटक के आगमन सँ जनकपुर धाम के नेपालक धार्मिक पर्यटन के प्रमुख केन्द्रक रूप में स्थापित कऽ रहल अछि। जानकी मंदिर, राम मंदिर, विवाह मंडप, धनुसागर, गंगासागर, विभिन्न प्राचीन मठ मंदिर, मिथिला कला, परंपरागत संस्कृति आ धार्मिक उत्सव सब जनकपुर धामक पहचान के अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पहुँचौलक अछि। विशेषकर भारत संघक सांस्कृतिक संबंध, राम जानकी विवाह परंपरा, विवाह पंचमी महोत्सव सँ धार्मिक पर्यटन के थप जीवंत बनौलक अछि।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाक 15 नगरसभा मे आर्थिक वर्ष 2083-84 लेल 2,65,20,32,000 टकाक आय व्यय सहितक बजट पेश कयल गेल अछि। उपमहानगरपालिकाक ज्येष्ठ वार्ड नंबर 16 वार्ड अध्यक्ष रामचंद्र पजियार द्वारा पेश कयल गेल बजट मे चालू दिस 1,42,77,09,000 टका रहल अछि, एना पूंजीगत दिस 1,22,22,53,000 टका रहल अछि। प्रस्तुत भेल बजट मे आर्थिक विकास दिस 5,94,54,408 टका विनियोजन भेल अछि, एहिना सामाजिक विकास दिस 83,28,98,762 टका विनियोजन भेल अछि। एहि तरह पूर्वाधार विकास दिस 91,22,78,830 टका, सुशासन तथा अंतर संबंधित क्षेत्र में 31,74,00,000 विनियोजित भेल अछि। कार्यालय संचालन तथा प्रशासनिक खर्च दिस 53,00,000,000 रकम विनियोजन कयल संघर प्रमुख मनोज कुमार शाह जानकारी देलनि अछि। एहिसँ पहिने 15 नगरसभाक उद्घाटन सहित नगरपालिकाक आर्थिक वर्ष 83-84 लेल नगर प्रमुख मनोज कुमार शाह नगर के नीति तथा कार्यक्रम पेश कयने छलथि। नीति तथा कार्यक्रम में स्वच्छ सुशासित समृद्ध पर्यटकीय तथा सांस्कृतिक जनकपुर धाम के परिकल्पना के साकार करबाक लेल सभा स्वच्छ सुंदर नगर बनेबाक लेल पर्यटकीय पूर्वाधारक विकास पर जोर देबाक उल्लेख रहल अछि। नीति तथा कार्यक्रम में जानकी मंदिर के विश्व सम्पदा सूची में सूचीकृत करबाक लेल संरक्षित क्षेत्रक नक्शांकन करबाक काज भेल अछि। एना संरक्षित क्षेत्रक काज पुरातत्व विभाग समन्वय में कयल जेबाक संगे अन्य मठ मंदिर पोखरि तथा दुधमती सहितक महत्वपूर्ण स्थल सभक संरक्षण पर जोर देल जेबाक उल्लेख रहल अछि। एकर संगे शिक्षा स्वास्थ्य तथा अन्य विकासक पूर्वाधार निर्माण में जोर देबाक उल्लेख रहल अछि। कार्यपालिका सदस्य राकेश विक्रम शाह एहि बेर हमरा सभक अंतिम कार्यकाल भेलाक कारणे जनता परिवर्तन के अनुभूति करबा सन काज कयल जेबाक धारणा रखलनि। मध्य प्रदेशक प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र परसा कठोरी में वर्षों से स्थायी विद्युत सेवा उपलब्ध नहीं भेला से स्थानीय वासी से समस्या होइत आयल अछि। सामान्य अन्हर बिहारि व वर्षा भेलाक बावजूदो घंटों धरि विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध होयबाक काज आ कम वोल्टेज हाफ लाइन ट्रांसफार्मर के अभाव तथा जीर्ण वितरण प्रणाली कारण स्थानीय सब समस्या भोगित आयल अछि। विद्युत लाइन निकट के गाछ आ झाड़ी समय में व्यवस्थापन नहीं कला से सामान्य अन्हर बिहार में तार में अवरोध सृजना हेबाक बेर बेर लाइन अवरुद्ध होइत गेल अछि। कतेको स्थान में विद्युत के पोल सेहो ढलला से दीर्घकालीन समाधानक लेल प्रभावकारी पहल नहि भ सकल स्थानीय कथन अछि। ठोड़ीक विभिन्न बस्ती में एखनो पूर्ण क्षमताक विद्युत सेवा उपलब्ध नहि रहल अछि। पर्याप्त क्षमताक ट्रांसफार्मर नहि भेला से न्यून वोल्टेज बारम्बार लाइन ट्रिप हेबाक तथा हाफ लाइन के भर पर बैसबाक अवस्था रहल ठोड़ी गाँव पालिकाक उपाध्यक्ष गोकुली कुमारी रेग्मी बदौलनि। एहिसँ घराइसी जीवन संगे कृषि व्यापार शिक्षा आ स्वास्थ्य सेवा में सेहो प्रत्यक्ष असर पड़ल हुनक कथन अछि। अनियमित वोल्टेज के कारण टेलीविजन फ्रिज कंप्यूटर पानि ताने वाला मोटर इन्वर्टर सहितक विद्युतीय उपकरण में क्षति पहुँचल स्थानीय शिकायत अछि। विद्युत अवरुद्ध भेला पर अधिकांश क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क सेहो प्रभावित होइत गेल। संचार सेवा आपातकालीन संपर्क तथा डिजिटल सेवा में निर्भर नागरिक तब समस्या में पड़ल गेल अछि। स्थानीय वासी सब ठोड़ीक विद्युत समस्या नया नहि भेल उल्लेख करैत बेर बेर ध्यानाकर्षण करला पर सेहो नेपाल विद्युत प्राधिकरण आ सरकारवाला निकाय अपेक्षित प्राथमिकता नहि देल आरोप लगौलक अछि। विकासक अन्य पूर्वाधार विस्तार भऽ रहल समय गुणस्तरीय विद्युत सेवा एखनो सुनिश्चित नहि भऽ सकब दुखद भेल हुनक कथन अछि। स्थानीय तत्काल विद्युत लाइन निकट के गाछ आ झाड़ी व्यवस्थापन आवश्यक स्थान में इंसुलेटेड कारी तार लाइन विस्तार जीर्ण पोल तथा तार प्रतिस्थापन पर्याप्त क्षमताक ट्रांसफार्मर जरान तथा विद्युत वितरण प्रणाली के स्तरोन्नति करबाक मांग कयलक अछि। पर्यटन के अपार संभावना रहल ठोड़ी में स्थायी विद्युत सेवा नहि भेला सँ स्थानीय अर्थतंत्र लगानिक वातावरण समग्र विकास में सेहो नकारात्मक असर पड़ल पर्यटन व्यवसायी संगीता लामा बतौलनि। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के अनुसार देशक विभिन्न स्थान में भारी वर्षाक संभावना अछि। हाल देशभरि मानसूनी वायुक प्रभाव रहल उल्लेख करैत विभाग हाल मानसून के न्यूनचापीय रेखा सरदर स्थान सँ किछु ऊपर नेपाल के तराई भूभाग निकट रहल जनौलक अछि। हाल देशभरि अधिकांश बादल लागल अछि। कोसी बागमती गंडकी लुम्नी कर्णाली प्रदेशक किछु स्थान में तथा मधेश आ सुदूर पश्चिम प्रदेशक एक दूटा स्थान में हल्का सँ मध्यम वर्षा भऽ रहल अछि। संगे आइ राति कोसी मधेश बागमती गंडकी आ लुम्नी प्रदेश में अधिकांश बादल लागत आ कर्णाली सुदूर पश्चिम प्रदेश में साधारणतया बादल लागत। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ऑस्ट्रेलिया सरकार अगला 12-18 मास भीतर सब अंतर्राष्ट्रीय यात्री के लिए डिजिटल यात्री कार्ड लागू करबा घोषणा कयलक अछि। एकर संगे विमानस्थल में प्रयोग होइत आयल कागजी यात्री कार्डक व्यवस्था क्रमशः अंत कयल जाय।
रेडियो नेपालसँग सुनै छलौँ मैथिली भाषामा समाचार समाप्त भेल।

वहमो गुमान से दूर दूर यकीन की हद के पास पास दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

बिनु कारण करुणा कर जाकर अस स्वभाव भल भ्राज। हौ कृपालु गुरु चरण शरण गही भयो धन्य जग आज। अर्थात बिना कारण ने जीव उद्धार करने स्वभावले सुशोभित शरणागत रक्षक परम दयामय सद्गुरु भगवान को शरण ग्रहण करेर म आज धन्य भए। प्रात स्मरणीय गुरुदेव श्री कृपालु महाप्रभु को चरण कमल में कोटि कोटि वंदन गर्दै कार्यक्रम अध्यात्म संदेश को प्रतीक्षा में रहनु भएका आदरणीय श्रोताहरू कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं राधे राधे। गुरु महिमा को संदर्भ में संत कबीरदास जीले आफ्नो कबीरवाणी में भनेका छन्, सब धरती कागज करू लिखनी सब बनराय, सात समुद्र की मसी करू गुरु गुण लिखी न जाए। यानी कि गुरु महिमा लेख्न म समर्थ छैन है भनी पहिले हात उठाइदिए। आदरणीय श्रोताहरू, संसारको लौकिक विद्या दिने शिक्षकको उपकार त हामी कहिले भुल्न सक्दैनौँ भने जसले हाम्रो आत्मालाई परमात्मासित साक्षात्कार गराइदिन्छन् त्यस्ता समर्थ महात्मा गुरुको गुण कसरी वर्णन गर्न सकिएला, अर्थात् कदापि सकिन्न, किनकि यसमा पनि उनैको कृपा शक्तिको साथ चाहिन्छ। अस्तु आउनुहोस् सत्सङ्ग प्रारम्भ गरौँ गुरु महिमा गानबाट।